0: गीता ज्ञान,
1: गीता ज्ञान संस्कृत भाषा रूपांतरण का साथ में प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। कार्यक्रम समर्पण। प्रत्येक शुक्रबार बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुमधुर रसमय भजन का साथ में अवश्य सुन्नुहोला केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। इस लोकप्रिय प्रसारण संस्था FM अध्यात्म ज्योति मार्फत व्यवसाय वस्तु एवं सेवाको विज्ञापन गर्न इच्छुक महानुभाव सम्पर्क हेतु टेलिफोन नम्बर 98 41 28 98 41 28 20

0: झूले यहाँ सुंदर FM अध्यात्म ज्योति ज्योति।
1: अध्यात्म ज्योति अध्यात्म ज्योति।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736। सिल्वर स्टेट सभी भन्दा पुरानो चांदी को एकमात्र शोरूम
1: सिल्वर स्टेट यहाँ को सेवा में निरंतर लगी रहेका छौं। त्यसैले त हामी गर्व गर्छौं किनकि हामीले यहाँ को विश्वास जित्न सफल भएका छौं।
0: सिल्वर स्टेट अत्याधुनिक प्रविधि बाट आफ्नै कारखाना में निर्मित बिना रसायन का पूजा सामग्री विवाह लगायत अन्य शुभ कार्य का लागि चाहिने यहाँले चाहे बमोजिम का चांदी का हर एक प्रकार का सामग्री लगायत गिफ्ट आइटम का लागि
1: सिल्वर स्टेट एउटै छाना मुनि चांदी का सबै सामानहरू।
2: सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ शाखा शुक्रपथ विशाल बजार को अगाडि र जावला खेल फोन 42 23 745 र 42 33 556।
3: श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड यहाँको विश्वासिलो र भरपर्दो वित्तीय सहयात्री। हाम्रा विशेषताहरू निक्षेपमा आकर्षक ब्याज दर सरल र सहज तरिकाले कर्जा प्रवाह देशैभरि रहेका शाखाहरूबाट निशुल्क एबिबिएस कारोबार सुविधा सी आसबास सुविधा कारोबारको जानकारी दिन एसएमएस अलर्ट सुविधा निशुल्क चेक बुक तथा सम्पूर्ण रेमिटेन्स सेवा। केन्द्रीय कार्यालय श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड दिल्ली बजार गुर्जुको चौक काठमाडौँ।
4: टुगेदर वी डेलिभर।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: नेपाल बैंक लिमिटेड का कर्जा ग्राहकहरूलाई ब्याज छूट सहित कर्जा चुक्ता वा नियमित गर्न आउने

0: Friends Weekend Classic Radio Show.
1: हिंदी सिनेमा में देखा जाए तो काफी दिल टूटे हैं और कई मिले भी हैं। ये महानगरी जिंदगी का सफर तो कराती ही है, लेकिन कभी कभी कॉम्प्लीमेंट्री एक हम सफर दे जाती है। मेरा मतलब है कि हिंदी सिनेमा में ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कब ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। रियल लाइफ पार्टनर रियल लाइफ पार्टनर बन जाते हैं। आज मैं एक ऐसी ही जोड़ी के बारे में बात करने वाली हूँ जिसने अपने प्यार के बीच कोई दीवार को नहीं आने दिया, ना लोगों को आने दिया, ना मजहब को आने दिया। वो एक्ट्रेस जो हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल है और वो एक्टर जो ओरिजिनल ही मैन है। मैं बात कर रही हूँ हमारे धर्म पाजी और हेमा जी की। वैसे सबको लगता है कि धर्म जी हेमा जी की पहली मुलाकात जो हुई थी वो तुम हसी मैं जवां की शूटिंग के दौरान हुई थी, लेकिन सच में वो इसके पहले भी मिल चुके थे। कहाँ और कैसे और वो क्या बात थी धर्म जी की जिसने हेमा जी का दिल चुरा लिया था, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले किशोरदा की आवाज में ड्रीम गर्ल फिल्म से ये गाना डेडिकेटेड टू द वेरी ब्यूटिफुल हेमा जी।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: वेलकम टू सिस्टर टेलरिंग
2: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
3: वो मलाई फ्रॉक
4: मलाई पनी सूट
5: वो
6: अनि मलाई

क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी के साथ में जो गाने हैं वो आपको सुना रही हूं। कुछ बेहतरीन गाने हैं चुन के लेकर आई हूं मैं आपके लिए, आपको ये गाने पसंद आ रहे हों। कभी कभी सोचती हूं अगर हम प्यार में उलझे नहीं होते तो आज जिंदगी इतनी सुलझी नहीं होती, है ना। ये एहसास ही कुछ ऐसा है जो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली और स्ट्रांग कर देता है। कुछ देर पहले मैं आपको बता रही थी कि हमारे वीरू और बसंती का साथ जो है वो बहुत पुराना है। लोग मानते हैं कि तुम हंसी मैं जवां फिल्म की शूटिंग के दौरान इनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता है हुआ कुछ ऐसा था कि हमारी बसंती और वीरू पाजी मिले थे 1965 में एट द प्रीमियर ऑफ दिस फिल्म कॉल्ड आसमान महल। पृथ्वीराज कपूर जी की ये फिल्म थी और इसके प्रीमियर में हेमा जी आई थी और साथ में धर्म पाजी भी आए थे और उन्होंने ब्राउन कलर का सूट पहना हुआ था, ऐसा हेमा जी रिकॉल करती हैं। शांत बैठे हुए थे, एकदम ऑपोजिट टू हिज ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी, जहां पर अग्रेसिव और एक्शन हीरो धर्म जी प्ले किया करते थे, वो एक्चुअली शांत बैठे हुए थे, ज्यादा किसी से बात नहीं कर रहे थे। चेहरे पे एक तेज था और साथ में एक मुस्कुराहट भी थी। धर्म जी के जो स्ट्रांग फीचर्स थे उनके ऊपर हेमा जी ने अपना दिल दे दिया था। उसी समय उन्हें धर्म जी से प्यार हो गया था। लेकिन अगर प्यार 1965 में हो गया था तो शादी में 15 साल क्यों लग गए? 1980 में इन दोनों की शादी हुई थी, क्यों इतना समय लगा? ऐसा क्या हुआ बीच में, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। फिलहाल आपको सुना रही हूं रफी साहब की आवाज में प्रतिज्ञा फिल्म से ये गाना।

प्यार वो नहीं जो मोम की तरह पिघला देता है, प्यार तो वो है जो पेड़ की तरह स्थिर रहकर जीना सिखा देता है। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आई होप आपको आज के चुने हुए गाने बहुत पसंद आ रहे हो, काफी दिल से मैंने ये गाने चुने हैं आपके लिए। अच्छा, हम हेमा जी और धर्मपा जी की जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं के गाने आपको सुना रहे हैं, तो आपको बताती हूँ काफी सारी रुकावटें आई थी इनके प्यार और शादी के बीच में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि हेमा जी बहुत एडमेंट थी, उन्हें अपना करियर पहले बनाना था और क्यों ना बनाए। एक बार तमिल फिल्म के डायरेक्टर श्रीधर जी ने हेमा जी को तमिल फिल्म वेनिराडाई, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट, लेकिन इस नाम से एक फिल्म थी, उससे रिजेक्ट कर दिया था, ये कह के कि वो बहुत पतली हैं और स्टार मटेरियल नहीं है। इस बात को हेमा जी ने दिल पे ले लिया था, काफी हर्ट हुई थी वो ये सुनकर के। तब वो ज्यादा कुछ बड़ी नहीं थी, 15-16 साल की ही थी, लेकिन वो जो ह्यूमिलिएट हुई थी उस समय, तो उन्होंने खुद को प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन मेगा स्टार बन के रहेंगी। तो जब धर्म जी के साथ में उनके प्यार की शुरुआत हुई तो उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर तो था धर्म जी के लिए, लेकिन उन्होंने धर्म जी को सीधा बता दिया था कि मैं तुम्हारे साथ तभी जाऊंगी जब मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो जल्द ही सक्सेसफुल हो गई, और इंटरेस्टिंगली श्रीधर जी, जिन्होंने उन्हें रिजेक्ट किया था 60s में, ही वॉज कंपेल्ड, उन्हें हेमा जी को अपनी मूवी में लेना ही पड़ा। और गहरी चाल करके ये फिल्म आई थी, जिसमें हेमा जी ने भी काफी हम्बल होकर के माफ किया श्रीधर जी को और ये फिल्म की थी। आपको पता है 1980 में शादी तो हो गई थी धर्मपा जी और हेमा जी की, लेकिन उसके लिए इन्हें अपना धर्म भी बदलना पड़ा था, क्योंकि धर्मेंद्र जी चाहते नहीं थे कि वो अपनी पहली बीवी को छोड़ें और फिर शादी करें। तो धर्म जी की पहली बीवी प्रकाश जी, जिनसे सनी और बॉबी हैं, उन्हें उन्होंने छोड़ा नहीं था और हेमा जी से शादी कर ली थी। वैसे आप जानते हैं कि हेमा जी को धर्म जी से पहले भी काफी सारे फिल्मी स्टार्स के रिश्ते आ चुके थे। कौन थे ये बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले लता जी की आवाज में नया जमाना फिल्म से ये गाना।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।
1: पिक्सी ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर का उत्पादन,
2: उच्च स्तरीय 100% सुतीबाट निर्मित, पसिना सोच्ने हलुका टिकाउ र मुलायम इनरवेयर।
1: जेन्स को लागि पिक्सी सुपर कुल भेस्ट ब्रिफ्स र पिक्सी गिलेक्स भेस्ट, लेडीज को लागि पिक्सी फेमिनेक्स क्यामिसोल र ब्लोमर।
3: पिक्सी फर द कम्फर्टेबल यू।
4: One oh four eight.

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। धर्म जी और हेमा जी की जिंदगी के कुछ पन्ने जो हैं वो आज हम पलट रहे हैं, इनफैक्ट इनकी लव स्टोरी जो है उसमें अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अ टॉपिक दैट आई लव द मोस्ट। मैं बात कर रही थी हेमा जी के बारे में कि इनके दीवाने कुछ कम नहीं थे, आखिर तभी तो ये ड्रीम गर्ल थी, क्योंकि सबके सपनों की रानी तो हमारी हेमा मालिनी जी ही थी। आपको पता है फिल्म मेकर एक्टर गिरीश कर्नाड जी का रिश्ता जो है वो भी आया था हेमा जी के लिए। वो तो इनफैक्ट हेमा जी के माँ बाप ही लेकर के आए थे, उनको बड़े पसंद थे गिरीश जी और वो चाहते थे कि हेमा जी इनसे शादी कर लें, लेकिन हेमा जी ने मना कर दिया कि नहीं मुझे ये ज़्यादा जमे नहीं। उसके बाद संजीव कुमार जी का दिल आया था हेमा जी पर, लेकिन उनमें इतना जिगरा नहीं था कि वो सामने सामने हेमा जी को बता दें अपने प्यार के बारे में। तो संजीव कुमार जी ने अपने दोस्त जितेंद्र जी को कहा था कि जाओ जाकर के तुम बात करो हेमा जी से। इनफैक्ट संजीव कुमार जी के तो इस प्रपोजल को मना कर दिया था हेमा जी ने, क्योंकि कुछ नशे की लत वगैरह थी जो संजीव कुमार जी को, वो बिल्कुल पसंद नहीं थी हेमा जी को। लेकिन जितेंद्र जी जहाँ ये मिडिल मैन बने हुए थे और संजीव जी के दिल की बातें हेमा जी को बताते थे, तो इस दौरान जितेंद्र जी का भी दिल आ गया था हेमा जी पर, इतना कि जितेंद्र जी ने प्रपोज किया हेमा जी को और इनकी साउथ में एंगेजमेंट भी होने वाली थी। तो जब सगाई तक बात पहुंच गई थी तब कैसे धर्म जी सामने आए और फिर अपने रिश्ते की बात की और सीन में वो आ गए, हीरो बन के आ गए, ही मैन बन के आ गए, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले सुनाती हूँ आपको रजिया सुल्तान से लता मंगेशकर जी की आवाज में अगला गाना ऐ दिले नादान। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। कुछ ही देर पहले मैं आपको बता रही थी हेमा जी और धर्म जी की लव स्टोरी के बारे में, आज उन्हीं के कुछ गाने आपको सुना रही हूं मैं। और मैं आपको बता रही थी कि कैसे जितेंद्र जी और हेमा जी की एंगेजमेंट होने वाली थी। चाहे शोभा जी थी उस समय कहीं ना कहीं दोस्त थी, थोड़ी पसंद थी जितेंद्र जी को, लेकिन हेमा मालिनी जी पर उनका दिल आया हुआ था, दोनों एंगेजमेंट करने वाले थे। और जब धर्म जी को इस बारे में पता चला तो उस समय सच में धर्म गरम हो गए थे। खूब गुस्सा आया धर्म पाजी को इस बात को सुनकर के कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो एक्चुअली मेरी ड्रीम गर्ल है। अपनी शूटिंग कैंसिल करा के सारा काम छोड़ के धर्म पाजी फ्लाइट लेकर के चेन्नई गए थे, जहां पर जीतू जी और हेमा जी की एंगेजमेंट होने वाली थी। और वहां पहुंच करके सबके सामने अपने प्यार का इजहार किया था। और फाइनली फिर हेमा जी के मम्मी पापा चाहे पहले नहीं राजी हुए थे, लेकिन फिर बाद में धर्म पाजी ने कुछ ना कुछ करके उन्हें भी राजी कर लिया, एंगेजमेंट टूटी। और उसके बाद में धर्म पाजी का जो सीन है वो हेमा जी के सीन के साथ में जुड़ गया। वैसे धर्म पाजी वॉज रियली रोमांटिक, हाँ हेमा मालिनी जी को ज़्यादा बाहर जाना, घूमना फिरना, डेट पे जाना या लंच पे जाना पसंद नहीं हुआ करता था। तो जितना समय बिता पाते थे धर्म जी हेमा जी के साथ में, वो सेट्स पर ही होता था। तो मैंने सुना है शोले फिल्म की शूटिंग के टाइम पर जब भी इन दोनों के साथ में सीन होते थे, पास पास बैठते थे, रोमांटिक सीन होता था, तो धर्म जी पैसे खिला देते थे, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे देते थे लाइट मैन को, जिससे कि वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम कर देता था, लाइट में गड़बड़ी कर देता था, और बार बार वही सीन को शूट करना पड़ता था जिसमें धर्म जी और हेमा जी साथ में हैं और कुछ तो रोमांस चल रहा है। हाउ क्यूट इज दैट। तो चलिए ये एवरग्रीन जोड़ी जो है इन्हीं के नाम सुनते हैं अगला गाना। हमारे बॉलीवुड के राजा और जानी है हेमा जी और धर्म जी, तो राजा जानी फिल्म से ही सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में अगला गाना। सुनते रहिए आप वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

0: कैसा लगा आपको ये शो? हर हफ्ते हम क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक। चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते।
1: Four eight.

0: आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें।
1: गीत नंबर 32, फिल्म 11,000 लड़कियां।
2: बाप रे।

ओहो भाई, मैं तो गीत में खो ही गया। खैर कोई बात नहीं, अब मैं फिर से जरा जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी बढ़ता हूँ आगे। अच्छा बहनों भाइयों, अब अपनी यादें ताजा करके मेरे साथ कदम रखिए 1962 की वार्षिक संगीत श्रेणी की पायदान नंबर 28 पर, जिस पर गीत था उस फिल्म का जिससे फिल्मी दुनिया में एक और जबरदस्त फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने अपना पहला कदम रखा था। वो इदारा था राजश्री प्रोडक्शंस, और वो फिल्म थी आरती।

0: अब यहाँ रुक कर हम सालाना संगीत सीढ़ी से जरा हटकर धीरे से बहनों और भाइयों आ जाएंगे गीत माला की छाओ में, मगर कुछ देर तक रहेंगे आरती ही के पास हैं। फिल्म आरती में हीरोइन मीना कुमारी की एक तरफ थे अशोक कुमार और दूसरी तरफ थे प्रदीप कुमार, जिनके बारे में यानी प्रदीप कुमार के बारे में एक बार मीना जी ने मुझे बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर बताया था।
1: पता नहीं कौन से जन्म का कर्ज देना है मुझे, जो प्रदीप जी हर फिल्म में मेरे सामने होते हैं। बड़े भोले से आदमी हैं, बड़ी दिलचस्प शख्सियत हैं। एक्टिंग का तो शौक है ही, मगर शिकार का जुनून है। नैनीताल में हम फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, भीमताल का एक किस्सा सुनिए। सड़क पर प्रदीप जी को एक तीतर नजर आ गया, बस लगे ढूंढने रिवॉल्वर। रिवॉल्वर मिला तो गोलियां ढूंढने लगे, बड़े जोर शोर से सड़क पर उतरे और फिर लौट कर अफसोसनाक खबर सुनाई कि चला गया। यानी बटेर इनकी गोलियों का इंतजार करता रहता तो बेहतर था।
0: मगर साहब, शिकारी प्रदीप कुमार और प्यारी मीना कुमारी की क्या जोड़ी जमी थी फिल्म आरती में। लीजिए, उन्हीं दो पर फिल्माया हुआ एक ड्यूएट है आज की छाओ का पहला।

0: अच्छा साहब, अब गीतमाला की छाव में बैठकर एक बड़ी क्लासिक दुरंगी फिल्म 20 साल बाद का गीत सुनिए। भाई, इसे दुरंगी फिल्म इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये थी तो सस्पेंस फिल्म। जाने पहचाने सस्पेंस राइटर और मशहूर जासूसी डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स के जन्मदाता आर्थर कॉनन डॉयल की एक कहानी पर आधारित बड़ी डरावनी मर्डर मिस्ट्री। मगर साहब, चार क्या खूबसूरत रसीले अमर गीत थे उसमें। दो तो एन्यूअल गीतमाला तक पहुंचे और दो मधुर गीत रह गए छाओं में, जिनमें से एक था ये
1: सपने।

0: अच्छा सस्पेंस थ्रिलर 20 साल बाद के खतरनाक खूनी विलन के रोल में थे न सिर्फ मशहूर कैरेक्टर एक्टर बल्कि पुराने रेडियो सिलोन के जमाने के बेमिसाल रेडियो कॉम्पेयर मनमोहन कृष्ण जिनके एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम फुलवारी में मैंने 1950-51 में हिंदी अनाउंसिंग का काम शुरू किया था। फिर एक साल बाद हमारा आपका गीतमाला प्रोग्राम भी शुरू हुआ जिसकी कहानी गीतमाला की छाओं के शुरू के कुछ वॉल्यूम्स में आपने सुनी ही होगी। बहरहाल 20 साल बाद देखकर मैंने मनमोहन कृष्ण साहब से पूछा था कि अरे मनमोहन चाचा आप इतने हंसमुख मिलनसार प्यारे इंसान हैं फिर आपने ऐसा खतरनाक कातिल विलन का रोल क्यों किया? तो मनमोहन जी बोले,
1: एक अर्ज कर दूं कि भगवान ने जो ये छोटी सी बुद्धि मुझे दी है ना उसी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए मुझे हमेशा से पता था कि मैं कद में कितना 10 फुट मनफी 6 फुट हूँ और मेरा थोपड़ा किस किस्म का है, इस थोपड़े पर कौन कौन से थोपड़े अपना एक्सप्रेशन फिट कर सकेंगे। ये तो कहिए कि कैरेक्टर आर्टिस्ट था जो अब तक जिंदा रहा, हीरो होता तो ना जाने कब का गुजर चुका होता।
0: खैर बहनों भाइयों, अब फिल्म 20 साल बाद ही के जरिए हम फिर लौटते हैं 1962 की संगीत सीढ़ी की पायदानों पर जिसकी पायदान नंबर 27 पर।
2: जरा नजरों से कह दो जी

नंबर 25 पर था फिल्म स्त्री का गाना। हाँ साहब, महान सीनियर प्रोड्यूसर डायरेक्टर वी शांताराम की तरकश का एक और हसीन तीर।

उन पर फिल्म की कहानी रची जाती थी। ये टेक्निक मुझे तो भाई बड़ी अजीब सी लगी, मगर मानना पड़ेगा मुखर्जी साहब की कई फिल्में इसी टेक्निक पर बनी और जबरदस्त हिट हुई। बहरहाल अब आगे बढ़िए साहब, सामने है उस वर्ष का गीत नंबर 23।

खैर मैं तो भाई अमीन सायानी हूँ और आपके साथ 1962 की पायदान नंबर 23 पर फिल्म मैं चुप रहूंगी के गीत की झलक सुन रहा था। अब हम नंबर 22 पर सुनेंगे झलक फिल्म बात एक रात की।

0: और बहनों भाइयों, अब ये देखिए सुहाने बादल छा गए और हम फिर छाओ में आ गए। तो 1962 की छाओ का ये सिलसिला शुरू करते हुए आइए हम सभी मर्द झूम के बन जाएं दिलीप कुमार, और लेडीज आप चाहें तो वैजयंती माला बनकर देख सकती हैं हमारा झूमना और हमारा नयन लड़ाना।
1: लागा गोरी गुजरिया से

0: दही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो कोई भी मुझे जिस रूप में देख सुनकर खुश होना चाहता है मैं उसी रूप में उसके सामने आने का प्रयत्न करता हूँ।
1: और अब त्रिपाठी जी का बोला हुआ एक मशहूर डायलॉग सिर्फ दो शब्दों का सुनिए।

0: मन शांति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी।
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास।
2: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: श्री इन्वेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड यहाँको विश्वासिलो र भरपर्दो वित्तीय सहयात्री। हाम्रा विशेषताहरू निक्षेपमा आकर्षक ब्याज दर, सरल र सहज तरिकाले कर्जा प्रवाह, देशैभरि रहेका शाखाहरूबाट निशुल्क एबिबिएस कारोबार सुविधा, सी आसबा सुविधा, कारोबारको जानकारी दिन एसएमएस अलर्ट सुविधा, निशुल्क चेकबुक तथा सम्पूर्ण रेमिटेन्स सेवा। केन्द्रीय कार्यालय श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली बजार गुर्जुको चौक काठमाडौँ।
2: टुगेदर वी डेलिभर।
3: कब्जियत, ग्यास, अपच, यी समस्या साना जस्ता लाग्छन् तर दिनभरको जीवनलाई अस्त व्यस्त बनाउँछन्। मैले धेरै उपाय अपनाए तर स्थायी राहत पाउन सकिन। अन्तत मैले रोजे एसआर ल्याक्स। 16 प्राकृतिक तत्वको संयोजनले बनेको यो ल्याक्सेटिभ ग्रान्युल्सले अब मेरो पेटलाई सहज बनाएको छ। बिहानको सुरुवात हल्का महसुससँग हुन्छ र दिन खुशी र शान्तिपूर्ण। एसआर ल्याक्स, प्राकृतिक र भरपर्दो समाधान कब्जियत, ग्यास, अपच र अम्ल पित्तको लागि। मेक योर डे ह्याप्पी एन्ड जोयफुल। पेट स्वस्थ, जीवन सरल। एसआर ल्याक्स नजिकको फार्मेसी वा आयुर्वेदिक स्टोरमा उपलब्ध छ।
4: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में।
5: और उस साल के एक और बड़े मधुर गीत की जो फिल्म थी ना, उसकी कोई भी चीज ज्यादा मशहूर नहीं हुई बहनों और भाइयों। उसके बड़े गुणी नौजवान म्यूजिक डायरेक्टर रॉबिन बैनर्जी भी ज्यादा आगे नहीं आ पाए। और फिल्म का नाम अंग्रेजी में पढ़ने पर लगता था कि ये शायद कुछ गेज के बारे में फिल्म होगी, सखी रॉबिन। मगर फिर ख्याल आया कि ये सखी नहीं, सखी हैं, यानी उदार। तो मेरा ख्याल है ये शायद रॉबिन हुड की कहानी होगी ना। खैर कोई बात नहीं, आप गीत सुनिए।
6: तुम जो

0: खैर आप हंसिए हंसिए और मैं अब चुप रहूंगा और छांव के दो गीतों को डायरेक्ट आपसे बोलने दूंगा। अरे बोलो भाई।
1: एक

0: चित्रगुप्त के शानदार संगीत से सजे हुए इस गीत को दो मंगेशकर बहनों ने गाया था, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर। तो भाई क्यों ना आज हम छोटी बहन उषा की आवाज में बड़ी दीदी लता के बारे में कुछ सुन ले।
1: दीदी सबसे बड़ी और मेरे पिताजी जाने के बाद पूरा परिवार उसने संभाला। हम लोग उसको बोलते थे पिताजी की जगह वो आ गई है। उस बहुत शांत स्वभाव की है, कुछ भी उसके मन के खिलाफ भी बात हो जाए तो कुछ बोलेगी नहीं, शांत बैठी रहेगी और सबको संभालने में वो आगे कदम होता है उसका। अच्छा। लेकिन कभी उसको बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए देखा नहीं मैंने।
0: अच्छा।
1: और ज्यादातर उसका संगीत या हिंदी काव्य उर्दू काव्य में ज्यादा ध्यान होता है और ज्यादा ज्यादा म्यूजिक की बातें होती हैं।
0: अच्छा, दगाबाज हो बांके पिया वाली फिल्म यानी बर्मा रोड में लता जी का गाया हुआ एक प्यारा सोलो भी था साहब, जो मेरा ख्याल है चित्रगुप्त जी की सबसे नाजुक और स्वीट तर्जों में गिना जा सकता है। उसके बोल थे, जुल्फें उलझी हैं मेरे कंगना में, आके छोड़ा जा सनम। मगर भाई वो गीत अच्छी क्वालिटी में मुझे नहीं मिल पाया, आपको मिल जाए तो जरूर सुनेगा है। खैर अब ये बताइए बहनों और भाइयों कि अब तो आखिर आपने मुझ पर हंसना बंद कर दिया है ना जी, आप हंस नहीं रहे सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। वेरी गुड।
2: मुझ

0: मुझे देख कर आपका मुस्कुराना।
1: ये गीत था वार्षिक पायदान नंबर 20 पर और इसकी फिल्म थी ओ एक मुसाफिर एक हसीना जी। और नंबर 19 पर था फिल्म आरती का एक और बड़ा ही भावुक गीत।

0: मंगलम अब सबैको मंगलम अब घर घरमा मंगलम सबैको इच्छा पूरा गर्ने चामल मंगलम
1: जय श्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित मंगलम जीरा मसिनो चामल मंगलम सोनम चामल मंगलम सोना स्टीम चामल स्वाद र संतुष्टि को लागी।

0: ಗೋಯಲ್ ಚುಚ್ಚೆ ಪಾಠ.
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ.

स्टिक मस्ती एंड डांस द बेस्ट ऑफ नॉन स्टॉप हिंदी रिमिक्स ओनली ऑन FM AJ 104.8 MHz.

आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें।

0: तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो में गाओ।
1: सारे के सारे कामा को लेकर काटे चले।
2: जी हाँ बहनों और भाइयों, आ गए सन 1973 यानी 1973 के सारे गीतमाला हिट गीत और लाजवाब छाओं के गीत। आज जिस सरगमी झलक से हम इस वॉल्यूम में दाखिल हुए थे ना, उसी की अनोखी बड़ी पुरासर फिल्म परिचय के एक और गीत से आज हम दिल थाम कर कदम रखेंगे उस साल की सुरीली छाओं में, या यूं कहिए कि उस साल की रसीली मगर बोझल बिरहा की रात में।

इस गीत में जो मर्दाना आवाज थी ना, वो थी बड़े सुरीले बड़े बाकमाल गायक भूपेंद्र सिंह की, जिनके गीतों को फिल्मी दुनिया में उतने मौके नहीं मिले बहनों और भाइयों जितने कि वो हकदार थे। बहरहाल अगर उनकी इस रैना को रसीला बनाया था पंचम के सुरों ने, तो पंचम के पिता उस साल अपने जीवन की शाम में भी हमारी शामों में रस घोल रहे थे।

1973 की छांव में छिपे हुए फिल्म फागुन के इस गीत के बाद बहनों और भाइयों अब शुरू होता है उस साल के बाकी हिट गीतों की झलकों का सिलसिला गीतमाला की सालाना पायदान नंबर 18 से। उस पर भी दादा बर्मन का जादू छाया हुआ था। फिल्म थी जुगनू।

0: छोड़ो बहाना
1: नाना गिर गया चुन्ना।
2: और वार्षिक पायदान नंबर 17 पर उस साल था लक्ष्मी प्यारे की धुन से सजा हुआ गीत, फिल्म का नाम गोरा और काला।

0: और साहब उस साल की पायदान नंबर 16 पर फिर महका था दादा बर्मन का मधुर संगीत। फिल्म थी जया भादुरी और अमिताभ बच्चन के पहले मिलन की शानदार फिल्म अभिमान। मगर गीत की झलक सुनने से पहले बैनर भाइयों सुनिए एक बड़ा ही अनोखा इंटरव्यू। वो इंटरव्यू अभिमान ही के दिनों मेरे घर के छोटे से स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था, जिसमें चले आए थे तीन बड़े सितारे अमिताभ, जया और गजब के गीतकार, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर गुलजार। और तीनों ने आकर अपने चहीते फिल्मसाज यानी अभिमान के लाजवाब डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी के बारे में जो मजेदार बातें बताई थी ना, उनका बस एक छोटा सा हिस्सा मैं आपके लिए ले आया हूं आज। इसकी रिकॉर्डिंग भी गीतमाला की छाँव में के मेरे रिकॉर्डिस्ट केवी जॉन ही ने की थी। और इसमें आप सुनेंगे कि अमित, जया और गुलजार ने अपने प्यारे मास्टर जी ऋषिदा की कैसी शरारती टांग खिंचाई की थी।
1: क्या है ऋषिदा, जिस दिन डांटते नहीं है ना तो हम लोगों को लगता है सचमुच हमने कोई गलती की है, बुरा लगता है।
2: अच्छा अच्छा, यानी उनकी डांट में भी प्यार है।
1: बहुत। और उनके साथ जब काम करते हैं तो लगता नहीं कि सटते हैं, ऐसे लगता है कि आंगन में बैठे हुए हैं और
3: मूंगफली खा रहे हैं।
4: मूंगफली नहीं गुलजार भाई, सर के बाल तोड़ रहे हैं।
2: सर के बाल तोड़
4: अमीन साहब, आपको ये नहीं मालूम?
2: नहीं।
4: एक और उनकी खास आदत है सर के बाल तोड़ना।
2: अच्छा।
4: कभी कुछ काम कर रहे होंगे, बड़े आराम से उनका हाथ जो है सर की तरफ बढ़ेगा, एक बाल चुनेंगे, उसको मसलेंगे, एक ही झटके में बाहर खींचेंगे, फिर उसे देखेंगे, सूंघेंगे और फेंक देंगे।
2: लेकिन अमिताभ साहब, ऐसा भी कोई बाल था जिसे उन्होंने सूंघा और फिर फेंका नहीं?
4: नहीं, इतनी देर तक तो मैं नहीं था वहाँ। लेकिन आजकल मैंने नोट किया है कि ये उनकी आदत जो है वो थोड़ी कम हो गई है, रिड्यूस हो गई है।
2: अच्छा, वो क्यों?
4: सर पे बाल ही नहीं रहे।
0: वाह भाई, क्या टीम थी वो भी, कितना प्यार करते थे वो तीनों अपने मास्टर जी ऋषिदा से, और कितनी पुरसर्थ

भाई अब तक तो खैर अमिताभ और जया का मिलन कई कई गुल खिला चुका है, दोनों नाना नानी भी बन गए हैं और दादा दादी भी। अच्छा खैर, अब 1973 के गीत नंबर 15 की झलक में आपसे कहा जा रहा है कि मोती को ढूंढ निकालने के लिए समंदर में डुबकी लगाओ, मगर कहा गया है हिंदी में नहीं, तमिल में।

बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में। और नंबर 14 पर भी एक बड़े अच्छे एक्टर का गाया हुआ गीत था। झलक सुनिए और एक्टर का नाम बताइए।

0: तो उस फिल्म ये गुलिस्ता हमारा के एक नेपाल के आसपास के किरदार का नाम था, जिसे अदा किया था डैनी डेंजोंगपा ने, जो खुद भी नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले थे लेकिन फिर एक्टर बनकर मुंबई में आकर बस गए। डैनी ने खुद मुझे बताया था कि उस गीत को गाने से पहले उन्हें किस तरह पहले डायरेक्टर आत्माराम को और फिर संगीतकार एसडी बर्मन को अपने सुरीलेपन का सबूत देने के लिए एक नेपाली लोकगीत गाकर सुनाना पड़ा। तो भाई उसी गीत के एक झलक मैं यहां सुनाता हूं आपको। मुझे तो डैनी का सुरीलापन बहुत ही पसंद आया था साहब, और हमारे नेपाली भाई बहन तो जरूर ये झलक सुनकर झूम उठेंगे।
1: के राम्रो जो बहना हेरी राहू भन्छनी आँखाले, आँखै महा बिलाउने को हो तिम्रो रूप बनाउने।
0: ये आया ना मजा डैनी की सुरीली आवाज सुनकर। तो भाई अब लौट आइए उस साल की सुरीली छाओ में। तीन बड़े प्यारे गीत मैं वहां से ढूंढ लाया हूँ जिन्हें लोकप्रियता की धूप नसीब नहीं हुई, यानी जो सालाना संगीत सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाए। एक तो वही पद्मा खन्ना की फिल्म का गीत था, रविंद्र जैन की धुन में ढला हुआ। फिल्म सौदागर का वो गीत सुनकर पद्मा जी के नहाने और फिर तन को सुखाकर कपड़े बदलकर तन को सजाने का मंजर नजरों के सामने आ जाता।

0: ये फिर एक बार गीत वाले की छाव में
1: कम सुनी हुई मगर बड़ी पुरअसर धुन मुझे संगीतकार चित्रगुप्त की भी मिल गई है उस साल की छाव में। फिल्म थी इंतजार, बोल वर्मा मलिक के थे और गायक थे
2: भाई वो तो आप पहचान ही ले।

0: मदन मोहन की आवाज भी है, ये बताते हुए कि एक फनकार, एक कलाकार के लिए क्या है सबसे जरूरी।
1: मैं ये समझता हूँ कि हर फनकार का जज्बाती होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसमें इंसानियत का जज्बा नहीं है तो वो सही फनकार नहीं हो सकता। भगवान ने कुछ फनकार को ज्यादा ही जज्बाती बनाया है। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरती से गाया गया है, सुन के कुछ एक अजीब सी कैफियत तारी होती है। दर्द भरा गाना है, लेकिन दर्द भी तो इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, इससे इंसान कब तक दूर भाग सकता है।

बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में भाई उल्फत की राहों को निभाने का तरीका तो अपनी अपनी उल्फत के राह ही ढूंढ ही निकालेंगे। हमें तो यहाँ गीतमाला की रस्में निभानी हैं। तो वो देखिए सामने तैयार खड़ी है 1973 की गीतमाला संगीत जोड़ी की 13वीं पायदान के गीत की झलक, दिलदार से एक प्यार भरी इल्तिजा लिए। फिल्म थी मेरे जीवन साथी।

साल हिट परेड के गीत नंबर 12 में राजा जानी धर्मेंद्र ने जब जरूरत से ज्यादा इंग्लिश झाड़ने की कोशिश की थी ना, तो उनकी हेमा ने उन्हें कैसे टोका था।

0: अच्छा साहब, उस साल पायदान नंबर 11 पर जो गीत था उसकी फिल्म के नौजवान डायरेक्टर उन दिनों फिल्मी दुनिया के इतिहास का एक सबसे जोरदार तहलका मचाने की भी तैयारी कर रहे थे। ये थे डायरेक्टर रमेश सिप्पी, जिनकी फिल्म शोले ने 1975 में जबरदस्त धूम मचा दी थी। मगर 1973 की ये फिल्म सीता और गीता भी बड़ी हंगामेदार थी साहब, हम सबको मनोरंजन के आसमान में उड़ा कर ले गई।
1: हवा के साथ साथ, घटा के संग संग,

0: चल तू ले हाथों में हाथ चल तू तो साथी चल।
1: आर डी बर्मन ही की एक और धुन पायदान नंबर 10 पर भी थी, फिल्म का नाम राजा रानी, मगर गाना चोर का।

वही आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी तो थे 1973 में आगे आगे, मगर दादा एस डी बर्मन भी किसी से दबने वाले थोड़े ही थे। सालाना संगीत सीढ़ी की पायदान नंबर 9 पर भी उन्हीं का राज था। वो तो बर्मन दादा का बड़ा ही पुराना ओरिजिनल हिंदी गीत था साहब, मगर डायरेक्टर विजय आनंद ने उनसे रिक्वेस्ट करके देवानंद की दिलचस्प फिल्म छुपा रुस्तम के लिए उसी धीरे से आने वाले गीत का पैरोडी रूप तैयार करवा दिया था।

बहन और भाइयों, अगर ये रेडियो का कोई स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होता ना तो यहाँ जरूर बचता खटमलों को मारने वाली दवाई का कमर्शियल। मगर ये हम तो हैं गीत वाला की छाव में, यहाँ तो बस हिट गीतों की झलकें हैं और छाव में छुपे रसीले गीत हैं पूरे के पूरे। चलिए यहाँ छाव का सेक्शन मैं फिर शुरू करता हूँ एक उलझन से। जी हाँ, उलझन, मगर रवि की बड़ी मधुर धुन और साहिर लुधियानवी के बड़े गहरे शब्दों से संवरी हुई उलझन। फिल्म वही जिसका एक गीत उसी साल नंबर 22 पर भी बजा था, यानी धुन।

उलझने तो बहनों भाइयों मेरे जीवन को भी उन दिनों हर तरफ से जकड़ने लगी थी। रेडियो प्रोग्राम गीतमाला की धूमधाम और भागदौड़ तो खैर बढ़ती ही जा रही थी और साथ में मेरे और भी कई बड़े बड़े और मुश्किल रेडियो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स शुरू हो गए थे जिनमें बड़ी बड़ी फिल्मों की रेडियो पब्लिसिटी के प्रोग्राम भी शामिल थे और हिंदुस्तान भर के कई शहरों में मुझे अक्सर उन दिनों जाना पड़ता था म्यूजिकल शोज या फैशन शोज या ब्यूटी कॉन्टेस्ट की कंपेयरिंग के लिए। और मेरे बेटे राजिल को हमने अजमेर के मशहूर बोर्डिंग स्कूल मेयो कॉलेज में भेज दिया था, सो उसकी याद और उसकी फिक्र भी हमेशा लगी रहती थी। और मेरी बीवी रमा को कई बीमारियां परेशान कर रही थीं और उसके लिए डॉक्टरों और हॉस्पिटलों के चक्कर भी शुरू हो गए थे, मगर हाँ शुक्र है रमा थी बड़ी बहादुर। तकलीफें सहते हुए भी वो न सिर्फ मेरे जीवन में बल्कि मेरे दफ्तर के कामों में भी मेरी पार्टनर बनी रही और उसी के सहारे मेरी उलझनों को थोड़ी सी राहत मिल जाती और हम दोनों की जिंदगी गोया बर्मन दादा की एक और अमर छांव की धुन में डूबकर संभल जाती।

बहनों और भाइयों, फिल्म अभिमान की लोकप्रियता 1973 और 74 में बढ़ गई थी। दोनों साल की एनुअल संगीत सीढ़ियों पर बजे उसके गाने, मगर उसके दो लाजवाब गीत साल की टॉप लोकप्रियता में शामिल हुए ही नहीं थे। तभी तो उनमें से एक गीत पिया बिन बासिया हमने पिछले वॉल्यूम की छाव में शामिल किया था और दूसरा ये तेरी बिंदिया रे इस वॉल्यूम में पूरा पूरा बजा। और अब गीतमाला की छाव में गूंजेगा 1973 का एक ऐसा गीत जिसमें दो बड़ी खास बातें थीं। एक तो ये कि उस फिल्म एक नारी दो रूप के बड़े गुणी संगीतकार थे गणेश, जिनकी काबिलियत का उजाला बहुत कम फिल्मों में ढल पाया। और इसकी दूसरी दिल को छू लेने वाली बात यह थी कि इस गीत में असद भोपाली के शब्दों के सहारे फिल्म संगीत के अजीम गायक मोहम्मद रफी ने अपने इंतकाल से 7 साल पहले ही पेशीन गोई यानी कि भविष्यवाणी कर दी थी कि उनके चले जाने के बाद संगीत प्रेमियों के दिलों पर क्या बीते।

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

आप सबसे एक विनती करूंगा, यह ब्रिज की उपासना है कि आओ साधो हरि चर्चा कीजिए, अधिक हो तो हमको दीजिए और कमती हो तो हमसे लीजिए, और पूरा हो तो छक छक पीजिए। ये ब्रिज की उपासना है। हमारे भक्तमाली श्री बिहारी दास जी या हमारे बीच विराजमान है। मैं ये बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ ना महाराज जी, क्योंकि मैं यहाँ मैं नहीं गाने आया हूँ, आप लोग भी मेरे साथ गाइए या ठाकुर को सुनाइए।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: श्रेष्ठ टेलरिंग
2: चीर परिचे यहाँ श्रेष्ठ।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: मंगलम अब सबैको मंगलम अब घर घरमा मंगलम सबैको इच्छा पूरा गर्ने चामल मंगलम
1: जय श्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित मंगलम जीरा मसिनो चामल मंगलम सोनम चामल मंगलम सोना स्टीम चामल स्वाद र संतुष्टि को लागी।

भक्तजनों, आज हम आपको वट सावित्री की व्रत कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस को किया जाता है। कुछ स्थानों पर यह व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भी किया जाता है। भक्तजनों, वट सावित्री का ये व्रत महिलाओं को सौभाग्यवती एवं संतान प्राप्ति देने वाला है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सती सावित्री इस व्रत के प्रभाव से अपने पति सत्यवान को जमराज से छुड़ाकर लाई थी, तभी से ये व्रत किया जाता है। प्रिय भक्तों, वट वृक्ष को दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है और सावित्री को सर्वोत्तम सती कहा जाता है, इसलिए इस व्रत का नाम वट सावित्री व्रत पड़ा।

प्रिय भक्तजनों, वट सावित्री व्रत की ये कथा एक बार ऋषि मार्कंडेय ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। जब धर्मराज युधिष्ठिर पूछने लगे, मुनिवर कृपा करके आप बताएं कि इस पृथ्वी पर क्या कोई द्रौपदी की तरह और भी पतिव्रता स्त्री हुई है जो राजकुल में पैदा होने के पश्चात भी पति धर्म निभाने के लिए वन वन भटक रही हो। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर ऋषि मार्कंडेय ने कहा, युधिष्ठिर इससे पहले भी सावित्री नाम की एक कन्या थी जो इससे भी कठिन पतिव्रता धर्म का पालन कर चुकी है। तब युधिष्ठिर ने मुनि मार्कंडेय को सावित्री की कथा सुनाने का आग्रह किया, तो ऋषि मार्कंडेय ने युधिष्ठिर को यह कथा सुनाई।

जनो ऋषि मार्कंडे ने युधिष्ठिर को बताया कि 18 वर्षों तक निरंतर यज्ञ करने के पश्चात ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री ने एक सुंदर कन्या होने का वरदान दिया, जिसका नाम सावित्री रखा गया। राजा अशुपति की कन्या सावित्री अत्यंत गुणवती एवं सुशील थी। समय के साथ साथ वो बड़ी होती गई तो राजा को उसके विवाह की चिंता होने लगी। राजा ने अनेकों जगह सावित्री के लिए वर की तलाश की, किंतु उन्हें सावित्री के योग्य कोई वर ना मिला।

कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि मार्कंडे ने बताया कि अपने पिता की आज्ञा पाकर सावित्री मंत्रियों के साथ अपने वर की खोज करने के लिए निकल पड़ी। उसने अल्प समय में ही अनेकों ऋषि मुनियों के दर्शन किए एवं तीर्थ स्थानों पर स्नान किया। ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त करके सावित्री जब लौट रही थी तो उसने एक अत्यंत ही गुणवान एवं रूपवान लकड़हारे को देखा और मन ही मन उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। मंत्रियों ने जब उस लकड़हारे का परिचय पूछा तो उसने बताया कि वो साल्व देश का राजकुमार था, किंतु उसके माता पिता का राज्य छिन गया और वो नेत्रहीन हो गए। अतः उसे वन में रहकर लकड़हारे के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है।

0: भक्तजनों, ऋषि मार्कंडे ने युधिष्ठिर को बताया कि जब सावित्री ने अपने पिता से सत्यवान के बारे में बताया तो मुनि नारद वहां बैठे थे। उन्होंने सारा वृतांत सुना और राजा अशुपति से कहने लगे, राजन, आपकी कन्या ने उचित वर की तलाश नहीं की, क्योंकि सत्यवान तो अल्पायु है। आज से ठीक एक वर्ष पश्चात उसकी मृत्यु निश्चित है। इतना सुनकर ही राजा अशुपति बड़े चिंतित हुए और अपनी पुत्री से कहने लगे, हे पुत्री, मुनि नारद की वाणी कदापि असत्य नहीं होती, अतः तुम अपने लिए किसी और वर की तलाश करो। किंतु सावित्री ने कहा, पिताश्री, मैं सनातनी नारी हूं, एक बार सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूं, दूसरा कोई भी और मेरे विचारों में नहीं आ सकता।
1: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम।

0: सज्जनों, ऋषि मार्कंडे ने युधिष्ठिर को बताया कि सावित्री ने कहा, पिताश्री, जिस प्रकार राजा एक बार आज्ञा देता है, ब्राह्मण एक बार वचन देता है, एवं कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस लौट कर नहीं आता, इसी प्रकार मेरा निर्णय भी अटल है। सत्यवान के अलावा किसी और के विषय में सोचना भी मेरे लिए पाप है। अतः आपसे विनती है कि आप सत्यवान से ही मेरा विवाह करें। मुनि नारद भी सावित्री के पतिव्रत को देखकर प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद देकर कहा, पुत्री,
1: बट वृक्ष वरिपरि घुमेर पूजा गर्नु भनेको केवल परिक्रमा होइन, त्यो आफ्नो सम्बन्ध प्रति प्रतिबद्धताको प्रतीक हो। आधुनिक समयमा बट सावित्री व्रतको सन्देश अझ व्यापक रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। यो केवल एकतर्फी कर्तव्यको कथा होइन, यो आपसी सम्मान, विश्वास र सहकार्यको कथा पनि हो। कुनै पनि सम्बन्ध तब मात्र सफल हुन्छ जब दुवै पक्षले एक अर्काको साथमा उभिने साहस राख्छन्। आदरणीय श्रोता, बट सावित्री व्रतले हामीलाई सम्झाउँछ कि साँचो प्रेम केवल सुखमा मात्र होइन, कठिनाईमा पनि परीक्षित हुन्छ। जब विश्वास अडिग हुन्छ तब समय, परिस्थिति र चुनौतीहरू पनि कमजोर पर्छन्। सावित्री जस्तो अटल निष्ठा र सत्यवान जस्तो जीवनशक्ति हाम्रो जीवनमा सधैँ रहिरहोस्। बट सावित्री व्रतको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। जय सावित्री माता।